गजानी का, फूल वसाल जवानी दीवानी का। ए चल बेटा चल बेटा, बम बम बम बम, चीक चिक चाम चीक चिक बम, चीक चिक चाम चीक चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक, पढ़ के बोल बेटा बम बम बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम बम बम, पढ़ के बोल बेटा, खिड़की खोल बेटा बम बम चिक बम बम चिक बम बम।

एक भाई शंभू बन गया तंबू, तंबू में झम झम ढोल बजे ढम ढम, तंबू में झम झम ढोल बजे ढम ढम, छोटी सी कबूतरी नाच रही चम चम चम चम चम चम चम चम चम चम, घुंघरू पायल बांधे घूमटा उतार चले, मुगले आजम के आगे खड़ी है अनारकली। ए चल बेटा चल बेटा, बम बम बम बम, चिक चिक चम चिक चिक बम, चिक चिक चम चिक चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक बम, चिक बुब चिक, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा बम बम, पढ़ के बोल बेटा, खिड़की खोल बेटा बम बम, चिक बम बम, चिक बम बम, थप थप ले ले बुचट का का, थप थप ले ले बुचट का का, फट फट ले धोबी फट का का, फट फट ले धोबी फट का का, ले बुचट का धोबी फट का, दिल सटका सना।

0: जल में दिखा दे प्यारे बच्चे, यही से दिखेगा अलबत्ता दिल्ली बम्बई कलकत्ता। अरे रामकृष्णा प्यार की कहानी, चाहे देखो तो चोर चाहे काला पानी। कल आज और कल 20 साल पहले, एक से एक नहले पे दहले, एक से एक नहले पे दहले।
1: आई कुम्बा कुम्बा तुड़ी जोधुमा तक छोटू बारी रेल कॉम जोमा जोम पा बिजली आलू दम।

दिल ने पुकारा। इस प्रोग्राम में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म प्रेम पुजारी से, गाया था किशोर कुमार ने, लिखा था नीरज ने और संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने। दोस्तों, देवानंद के बारे में बातें कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। आपने ट्यून किया है 90.8। 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर में जन्मे थे देवानंद। धर्मदेव किशोरीमल आनंद उनका नाम था। काम की तलाश में ये लड़का मुंबई आया और मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम करने लगा, लेकिन हसरत तो एक्टर बनने की थी। ऑडिशन के लिए चुना गया, ऑडिशन तो हुआ पर इनके दांतों में जो गैप था वो आड़े आ गया, लेकिन बाद में यही गैप उनकी पहचान बन गया। शायद उसी की वजह से जो अलग सी मुस्कान इस लड़के ने पाई थी वो दर्शकों को पसंद आ गई। दोस्तों, नसीब में जो लिखा रहता है वही होता है। इस लड़के ने ऐसा नसीब पाया था कि उसकी बीसियों बातें स्टाइल बन के रह गई हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा याद रहते हैं ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के देवानंद। बाद में 40-50s के दशक में हरे राम हरे कृष्ण जैसी फिल्मों वाले देवानंद।

ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का एक भोला भाला फिल्मी नटखट चेहरा जिस गाने में नजर आता है, वही गीत आपने सुना संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाज में। फिल्म थी सजा। संगीतकार थे SD बर्मन, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। शुरू में एक पतला ढीली पैंट पहनकर गले में स्कार्फ लटक कर जरा तेजी से जैसे भाग रहा है ऐसे चलते हुए नजर आते थे देवानंद। उसे भी स्टाइल ही कहा गया। ये स्टाइल भी नसीब वाली थी जो भाग गई लोगों को। एक स्टाइल ऐसी भी थी कि जब वो बोलते थे तो पॉज नहीं लेते थे। एक पत्रकार ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो वे बोले कि मुझे लंबे लंबे डायलॉग मिलते थे तो मैं कश्मकश में रहता था कि पॉज लूँ या न लूँ, तो मैं एक ही सांस में सब बोल जाता था। बस यही स्टाइल बन गया था। इसी को तो नसीब कहते हैं जनाब।

दिल ने पुकारा में अभी आपने गीत सुना, 9-2-11 फिल्म से लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने और गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। दिल ने पुकारा में आज बातें कर रहे हैं सदाबहार देवानंद की। तो स्टाइलों की बात तो हो गई, असली जिंदगी में भी देवानंद एक सदाबहार व्यक्ति बने रहे। उनके प्रशंसकों ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाहरी देशों के राष्ट्रपति से लेकर डाकू भी उनके दीवाने रह चुके हैं। एक रोमांटिक चेहरे का ये मालिक सारे फैंस के दिल को चुरा के ले जाता था, पर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ रोमांटिक भूमिकाएं नहीं की, बहुत सारी ऐसे भी किरदार थे जिन्होंने दर्शकों को रुलाया है। गाइड का राजू, काला पानी का सोल्जर, ज्वेल थीफ का डाकू और न जाने कितने किरदार। कितनी ही सफल फिल्में, सफल हीरोइनें, सफल डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया। खुद की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन के वह सह संस्थापक थे, निर्माता निर्देशक के रूप में भी सफल रह चुके। बतौर लेखक उन्होंने 2 फिल्मों की कहानी लिखी, प्यार का तराना, देश परदेश। निर्देशक के तौर पर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी फिल्मों के गीत बेहतरीन रहे, यादगार रहे।

दोस्तों बॉलीवुड का ग्रेगरी पेक जिसे कहा गया है उन्हीं को याद कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। जॉनी जिसका नाम है, गाइड जिसका काम था वो ज्वेल थीप भी था, मुनिम जी था प्रेम पुजारी था, बम्बई का बाबू था, CID भी था और क्या क्या कहें इस देव के बारे में। दोस्तों देव जैसे कलाकार कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा हैं उनकी फिल्मों के ज़रिए, बातों के ज़रिए, सफलता के ज़रिए और गीतों के ज़रिए जो सुनाता है रेडियो विश्वास। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो विश्वास, आपकी ज़िंदगी आपकी आवाज़।

यहीं पर। अरे ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

दिल ने पुकारा इस प्रोग्राम में अभी जो गीत आपने सुना वो था फिल्म प्रेम पुजारी से, गाया था किशोर कुमार ने, लिखा था नीरज ने और संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने। दोस्तों देव आनंद के बारे में बातें कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, आपने ट्यून किया है 90.8। 26 सितंबर 1923 को गुरदासपुर में जन्मे थे देवानंद। धर्मदेव किशोरीमल आनंद उनका नाम था। काम की तलाश में ये लड़का मुंबई आया और मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम करने लगा, लेकिन हसरत तो एक्टर बनने की थी। ऑडिशन के लिए चुना गया, ऑडिशन तो हुआ पर इनके दांतों में जो गैप था वो आड़े आ गया, लेकिन बाद में यही गैप उनकी पहचान बन गया। शायद उसी की वजह से जो अलग सी मुस्कान इस लड़के ने पाई थी वो दर्शकों को पसंद आ गई। दोस्तों नसीब में जो लिखा रहता है वही होता है। इस लड़के ने ऐसा नसीब पाया था कि उसकी बीसियों बातें स्टाइल बनके रह गई हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा याद रहते हैं ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के देवानंद। बाद में 40-50s के दशक में हरे राम हरे कृष्ण जैसी फिल्मों वाले देवानंद।

ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा का एक भोला भाला फिल्मी नटखट चेहरा जिस गाने में नजर आता है, वही गीत आपने सुना संध्या मुखर्जी और हेमंत कुमार की आवाज में। फिल्म थी सजा। संगीतकार थे SD बर्मन, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। शुरू में एक पतला ढीली पैंट पहनकर गले में स्कार्फ लटक कर जरा तेजी से जैसे भाग रहा है ऐसे चलते हुए नजर आते थे देवानंद। उसे भी स्टाइल ही कहा गया। ये स्टाइल भी नसीब वाली थी जो भाग गई लोगों को। एक स्टाइल ऐसी भी थी कि जब वो बोलते थे तो पॉज नहीं लेते थे। एक पत्रकार ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो वे बोले कि मुझे लंबे लंबे डायलॉग मिलते थे तो मैं कश्मकश में रहता था कि पॉज लूँ या ना लूँ, तो मैं एक ही सांस में सब बोल जाता था। बस यही स्टाइल बन गया था। इसी को तो नसीब कहते हैं जनाब।

दिल ने पुकारा में अभी आपने गीत सुना, 9-2-11 फिल्म से लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया था एस डी बर्मन ने और गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। दिल ने पुकारा में आज बातें कर रहे हैं सदाबहार देवानंद की। तो स्टाइलों की बात तो हो गई, असली जिंदगी में भी देवानंद एक सदाबहार व्यक्ति बने रहे। उनके प्रशंसकों ने सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाहरी देशों के राष्ट्रपति से लेकर डाकू भी उनके दीवाने रह चुके हैं। एक रोमांटिक चेहरे का ये मालिक सारे फैंस के दिल को चुरा के ले जाता था, पर देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ रोमांटिक भूमिकाएं नहीं की, बहुत सारी ऐसे भी किरदार थे जिन्होंने दर्शकों को रुलाया है। गाइड का राजू, काला पानी का सोल्जर, ज्वेल थीफ का डाकू और न जाने कितने किरदार। कितनी ही सफल फिल्में, सफल हीरोइनें, सफल डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया। खुद की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन के वह सह संस्थापक थे, निर्माता निर्देशक के रूप में भी सफल रह चुके। बतौर लेखक उन्होंने 2 फिल्मों की कहानी लिखी, प्यार का तराना, देश परदेश। निर्देशक के तौर पर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों का निर्देशन भी किया। उनकी फिल्मों के गीत बेहतरीन रहे, यादगार रहे।

दोस्तों बॉलीवुड का ग्रेगरी पेक जिसे कहा गया है उन्हीं को याद कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। जॉनी जिसका नाम है, गाइड जिसका काम था वो ज्वेल थीप भी था, मुनीम जी था, प्रेम पुजारी था, बम्बई का बाबू था, CID भी था और क्या क्या कहें। इस देव के बारे में दोस्तों, देव जैसे कलाकार कभी मरते नहीं हैं, वो जिंदा हैं उनकी फिल्मों के ज़रिए, बातों के ज़रिए, सफलता के ज़रिए और गीतों के ज़रिए जो सुनाता है रेडियो विश्वास। तो सुनते रहिए, सुनाते रहिए रेडियो विश्वास, आपकी ज़िंदगी आपकी आवाज़।

कहानिया ये मस्त मस्त बिन के जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

रहमा किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते।

0: फिर उसके बाद
1: अरे अरे भाई अहिंसा परमो धर्म है, हाथ मत उठो, हमें कानून के हद में रहना है, इंसानियत की सीमा पार नहीं करनी।
2: देश द्रोहियों की हम तमड़ी उधेड़ देंगे।
1: ये सब तुम मत बोलो तो फिर कौन बोलेगा?
3: वो बोलेगा।

किसी से जीत कर भी हारने वाले कयामत की नजर रखते हैं लेकिन ताड़ने वाले जा अरे जा जा जा रे